भजन कबीर नारायण कबीर भजन गुरु सदा वल्लभ कबीर विराज राम सुनि वला सदा सुनि वला सदा